0: करंट का पेड़। आगे
1: बार बार आने खोस्तान थी ना पोलिश आरा बंदा निश्चित है गया नेदर।